0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधि मंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक

0: आया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर ट्रुक ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आपसी साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्री नेतन्याहू ने कल श्री मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में ये बात कही। बृहस्पतिवार को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्र स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति कल श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्र ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी तेज बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है। इधर दिल्ली में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इनके जों से इतुम छ बोर इलो पुते सक्सेस ए लोंग अथे नीली तमे बिहेक पेन पथुलो इनके नीली क्लब के मेसेन और टूर्नामेंट किथे किथे के पथु धुंजी अफन के नीली 3 इयर्स अन के प्रैक्टिस लो के ला सो 3 इयर्स अंग बोंग नीली केरेंग मिलो ले फोली आरवे थेपे को तमे नीली प्रैक्टिस लपन आनी सो ओ तमे प्रैक्टिस तमे नीली कोच और नीली सीनियर तुम तमे नंग थान थान जे नंग तुम गोल से लेच एचीवी और नंग तुम ड्रीम्स लेच एचीवी पुते हार्डवर्क के नंग मने के नंग सॉट लालो रसी नी तमे नीली एक नीली कोच लपे नीली सीनियर तुम तमे अलाम अर्जु बॉम लो लपेन अर नमन तमे क्रॉय बॉम लो लालो यो चेबोर इपन बॉम लसी नॉन ओवे के मिस तमे चेबोर इपन बॉम नॉन क्लब के मिस सेंसन लुदु नॉन लपेन इसी नीली पुजी पुके ला नॉन नीली थेगलोंग लो ला नीली रोंग तमे फुटबॉल पथु दम दम लसी नीली फार और नीली पेन की बी तुम के मैंने सोनो पुजी बीरी सी मोंग थुरंग बीरी तहों सिगरेट से चुरंग लसी लहाई बांग पिनी दे रला फुटबॉल आई हिन और नक तुम अजात स्पोर्ट तमे क्रिकेट तमे टेनिस तमे वॉलीबॉल तमे बास्केटबॉल तमे और यार लो है जी फुटबॉल सोन तमे जुदुनो नंग हेल्थ में पो नंग तुम लपेन जोंसी नंग हेल्थ ले मेरोते सोनो पुजी लाइफ के चलो मिदी स्मूथ मिदी लालो लापे नंग तुम नंगली पो पाय लाम छ जुनोन अथे मुनंगली तुम नन तो नन तुम मेक सेन लो मुनंगली तुम कि सुंग हुत के नंग जे पो ता हो ला नंग बेस्ट फ्रेंड तुम के मने कि सुंग हुत के नंग खरा बांग बावे ए पाय पो तुम सी ए प्रांग बाई लसी ए पाय पो तुम लाम छ जुनोन लापे नंगली कोस नो लाम छ जुनोन तोवार के मे अनंग के जा तुम लाम छ जुनोन तोवार के मे दुन नन इनके सक्सेस बांगते छि इचे नन लालो यो
1: तंते ला मार्बल मते स्पेन लोंग के दामजी फन के लद्दाख सेलेक्टेड पेन बैंक के कोसन नंग का जिसिक थु नंग के लपेन हदा के दामजी फन के कोसन लगा जिसिक पोनंग जी के लास्ट में नंग थानजिम
0: ओला लो एक नि तुम फन गुवाहाटी लोंग लाइ तुम केम द बॉम पेन लास्ट आनी है लसुची मेन ला माने मेन नोम दी माने नका सेलेक्ट है माने डे 1 में नमीना सेलेक्ट लो सतमी को सुनंग पुलो पिनी के फाइनल आनी लो तुम बेस्ट पी नॉन नि तुम दलो नका सेलेक्ट बैंक के लसी बेस्ट पी नॉन पर है अमन ली तमी बेस्ट पी नॉन लो इनके लसो आनी मत के माने सनो पुजी अलीस के नहीं पे तुम से लेक लो पगे दी आफ्टर 2 डेज सी अलीस नंगे पे अमा न्यूज ला न्यूज पढ़ लो है निमेन तमे क्लांग नोन लो अमा ला घाटी अकोस बंग है अलंग मंग नंग कॉल लो सर नो नंग ट्राई लोंग अलो दे लो अमा ओ थैंक यू सर पुलो नीली लासवा नी निंग करंग छिरु थु बंग लो है जे को अन्नी मने नी बिहेक पेन कोनी का प्रैक्टिस पलो मने का प्रैक्टिस पढ़ लो ला पेन नीली कोच पेन और नाम तुम लाम के क्रॉय पेन लो पुल है निंग चारोंग लो उनके ला घोटे कोच पर नंग कॉल लो सार्ट में नंग मने कांग्रेस फाइन नंग पुल लो इनके चपदो नॉन पुल लो इनके सार्वन नंग पुल लो नंग पासपोर्ट है दोलो मा पुल लो अमा नीली पुल लो सार नीली पासपोर्ट बैंक आवेलांग पुल लो अमा नंग पुल लो जोंग सी नंग उन पुते पेना पेन क्लेम नम देन नॉन दम दा प्रांग जी पहले है अमा चौक सार पुल लो इनके नीली नीली पो पेन नमे बहिनी पासपोर्ट सलाम नम लो इनके पासपोर्ट टामे आफ्टर 1 मंथ 7 डेज अफ इसी पासपोर्ट नंग ले लो अमा सार डोमा नंग कॉल थुलो पासपोर्ट लोंग लो मा सार नंग पुल लो अमा सार लोंग लो पुल लो अमा नीली आर्डु थुल लो सार नीली कॉलेज ता दो लसी कमेंट तुल लोम निजी के दम जी बेलो अमा पासपोर्ट के लोंग लाप्स के ओंग लोन सिता मे बांग फो के लोंग ले लांग लासला बांग फो वन इन होंग दैट प डेट बैंक के अक्टोबर लम से दमी नसी अक्टोबर लम दम पो डेट बैंक के ना फिक्स फिलांग अमन बैंक तो अक्टोबर लो सदमी डेट बैंक ना फिक्स फिलांग ना फिक्स फिलांग पुलो नीतु मो ग्रु लोंग तमे ना अपडेट बम पो पेल है मा चॉक सर पुलो इनके अड्रु तो लो है नीली सर वीजा के इंटीग्रेशन ने मत वीजा बैंक नीतु मदा गुवाहाटी बेंसी ना क्लेम पो पेल है गुवाहाटी बैंक से तुम वीजा बैंक नंग सुन पि नंग लाइफ पिलाप पो के नंग के नंग तुम थंग ता मथरंग ने लदा गुवाहाटी बैंक से तुम नंग स्पोंसर जी के दाम के बैंक के चो की जून जर्सी पुनन लाइलो है नंग तुम हदा के दो के तुम सॉफ्ट फ्री लो जस्ट नंग तुम प्रैक्टिस जोन पमे नॉन आसाम अपन नोमे वन नॉन लपे नंग पो नंग पो नंग पाई लपे नंग कोच नंग नंग क्लब अपन नोमे वन पि नॉन पुयो लाइलो नाइ पुर
1: मेपिक मेपिक अलो नंग केबोर इदोना साई के लपेन के नोंगमे सनसे नंगली पाक्लांग पोनलो इलि तुम कार्बेंग लोंग रा रा फान लपेन के कदु कबे लबा सोलाम थे कारजुलोंग आना तुम स्तामे अलांगली के नोंगमे सि एके वन पी एसन ल अलांगली एसन थाक थाक लि तुम पिनांग अन आ ओवे तुम के बोर इदु नंग लांग अलांगली मार्बेला माते स्पेन लोंग कि दुन लोंग के जॉय के काली अलांगली को अन पेन नेगा चपद दु बिहेक पेन का चपद दु नॉन पु अन सि अलांगली सितामे किचुन लपसन सि थेक दुन लोंग लसी इलि तुम कदो कबे अलांगली लाम थे कारजुलोंग आरा तुम अन सितामे अलांगली एसन थाक थाकले बोर इदुन लोंग tangte pothot arju thulang mehjong ban dali tum che than lo spain a det along ni krip li phan se hada kachar li phanang li tum dam nang ji pula se hadak dam det pen mu india long chewang thu mate dak li tum assam kar beng long long chewang thu de la phike kupila nang tum phan ale ke long pon ji
0: ale ke long pon bang kya manel hai bang nang

0: लीग तमे डाक सी डाक पंदा जुई लो पथु लो एक्सपीरियंस आई मिदुन सेन सेन लो इनके ला कोस तमे खाई लो मोरीगाव तहो नने विश्वनाथ तहो लाई तमे खला नाम पोन उल है इनके को नने आई लीग प्लेयर मन मे छे फॉलो निग्रु दो मन मे छे फॉलो निग्रु तो मने थेलोंग लोक तने की के फर्स्ट टाइम दी थेलोंग है का फेरेलो मींस थिउ उ बुरे मुन चोरी बु बेले है अमा कोस तो मन पुलो नंग फेरेलोंग त हाय नेलो तो मने लो इनके कोसोन मे ओसोने हाय ता हाय दसोनी है हाय ता हाय दलो इनके इनिंग बैंग सोनो पिचे थेलो जे नि तुम छ बहुत इते उंजी पे है गिव अप इते चोकलो पेले है सिनेली गिव अप एलो छ पाटा छ पाइलो इनके लालो जो किनेली हिल्स के जॉनमैन के सी पेन के नि मेथांग छ माथा पेने है नीली हिल्स के जॉनमैन के निभा के मे सोनो जो अथे सोनो पुजी हिल्स के जॉनमैन सि नि गेम दा मने चिन प्रूफ लो अ कोस्ट मे के मिशन के लॉन्ग लो प्लेयर डोमेन तमे के थे प्लेयर डोमेन तमे चिनी लो केनो ला मार्बेला एफसी पु है स्पेन है लडाक्टा निकेला हिल्स पेंसी कि दुलोंग लो हिल्स अक्ला पेंसी निया डाक मार्बेला तमे के पथु दुन माने हिल्स मानसी ने के रिप्रेजेंट दुन है लालो जो लडाक पेंसी मार्बेला तमे काडू दुन माने मार्बेला तमे नॉन दाम लोंग पोंग ला स्पेन है लालो जो
1: नंगली हिन पेन नॉन ओवे की मी तोम फान को पीपी थान पाचिनी पोनिंग तुंग
0: लालो नीली पुजी पो लालो ओ ओवे चिंग थोर और ओवे की मी अतुमा फान के की पुजी पो लालो जे नंगली तुम गिव अप री लाइफ लॉन्ग के केरेम के हाई के दो बम लसी यंग तुम हाई जत लुपते आंसर से छ बोरी नो रेम दे तमे आंसर से छ बोरी नो अथेमा फेलर इज द पिलर ऑफ सक्सेस बुदो लसी तुम केरेम एन सी के हाई मने के हाई पो लालो लपे नली तुम अदा रोंग के दो और टाउन के दो तमे हेदी अदा ट्रायल के वांग बम कासा लोंग हेदी कासा और वेस्ट कार्बियन लोंग तमे नहोक तमे ट्रायल के वांग बम लसी ट्रायल बंग के पिदुन वेग नो अथेमा नंग तुम दा रोंग लोंग पथुरे टाउन लोंग पथुरे के कांग तुई बंके लेदुनी चांस बंके अवे लडाक ट्रायल बंग पिदुन बम नन अथेमा ट्रायल वांग पुलोते लाके कांग तुई क्लब और कांग तुई यंग तुम आंग देंग अनकले दुनी चांस दो नीली तमे ट्रायल पिदुन बम लो बिहेक पेन मोर देन 20 क्लब्स बक दोलो ने फनाका रिजेक्ट आंग तमे नन लडाक मार्बिला बंके लोंग लोंग उन चिलो सिला सोंदाक तक सिनाली तुम तमे चेबोर इन नन लडाक नंग तुम ए फोंग फोंग नि ट्रायल लोंग का रिजेक्ट पेन तुम गिव अप दैट फुटबॉल बंग इरी बुप तंग हो और जस्ट फन फन सिनन तुम के प्रैक्टिस और के पथु चोट पु बंगे लासन के कले देनांग पो तुम के पाथुलो पुते निंगा क्लोम पेनांग पो गिव अप नंग नेलो लपेन नली तुम के पाथुलो पुते फ्यूचर फनले पाथु तु अथेमा फुटबॉल बंके इंडिया लॉन्ग स्कोप दो नली तुम पाथु मेसेन पुते कि मेसेन अक्ला दोंग नंग साइन जी आदर मेसेन तमे तुम लोंग पोन बम जी लालो जो
1: तांते इतुम पेना आन के फुटबॉल का पाथु अलम थे जे थान पोन लो लसी फुटबॉल का खेला हिन कोमा फांस नली निंग के डॉक नाइल
0: नीली निंग के डॉक नाइ के बांहिनी दो इनुते गोली पाडो है मार्क टर स्टेजन पु अलांगली के पाथु के फुटबॉल क्लब बार्सिलोना लोंग लता स्पेन लो है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना लोंग अलांगली तमे के पथु मे पिक लपनिल अलांगली फनिंग दो पिक लपेन आको सेकेंड बंग के रोनाल्डो अलांगली फने कचिनी ने बंग आवे जीवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो फने अल अपन अलांगली मींस इसी अकोस दुम ने दी अलांगली लाम का निंजे और के थान है दी यु तुम फन अलांगली लाम के थान और लाम का बुझाई है दी माने निनिंग दुन इ रेती नीली माने गिव अप इनोते सक्सेस बंग लॉन्ग जी लपेन लाम अर्जुन सीनियर तुम फन कोच तुम फन लपेन लालो और नाम हन बिलीव नहीं भेदी नेता लहाई लाम बंग के अलांगली लोंग से चली दुन माने अलांगली को सोनमा के थान है दी नेता लहाई से का फॉलो दुन अटेंग लो जो सक्सेस दे सोनपुजी बोर इन नाइन भेदी लहाई लो जो
1: तंते फुटबॉल पाथु दुन वेरा बंग फुलो लसी अजात का पाथु लोंग से तमे इसी अपोजिशन दो लसी नंगा बंग के कोलोसो पोजिशन लोंग सी का पाथु दुन
0: नीली बंग के गोलकीपर सी की के पाथु एक ला जीके अपु है नीली गोलकीपर सी पाथु बोले ने बंग
1: तंते पुथल अर्जु पंथु लंग पेना अनके तुम फुटबॉल का पाथु अलम थे लपेन नन स्पेन लोंग के दुन लोंग जे अलम समे चेथान लोंग ल लसी पुथत अर्जु थलांग नंगले तुम हेम तुन लोंग बंग को अंदर ल लसमे थान बचिनी पंजिम लपेन नंग तुम रोंग के को दाक ल
0: लालो नीली रंग के लोरोलांग सो चिफोंग सजे पे नीली पाय मेने कदम तेरंग पी नीली पो मेने हेमचंद्र तेरन अपे नीली तुम कोटे बांगे थम दो अपे नीली इंजरी नु दो अक्लेंसी के मेमरी तेरन पी अपे लासो के दुन के सरक्री तेरन अनके लादेते सारलोंग तेरन अपे नीली लो सारनोंग तेरन लालो जो इनके इतुम कोटे बांगे थम इनके इंजरी नु बांग फिल्म नि दि इतुम चिंगहोन ओ लाम तमी चेशर ओ लालो जो लापे नीली कचुरो कांग तुम नि इ बबू सो तेरन पु अलांगली हेनलो निहान सोन पुजी ला स्पेन हदि ला स्पेन फन ट्रायल घाती नंग खेंग हुत अलांग से नि फन नीली पु बने नीली पाई फन लाम का बुजाय लो जे ला सोन अट्रायल के वांग वेरवे ला पेन सिलेक माने सिलेक ओते मे ओंग चोर लो इतु पुरिया ला फन और कार्बियन लोंग फन नोंग मे वान पो जोंग से जोंग ले देते लोंग ले देलो सिस्टम ए फोंग पदुन लोंग था पे हदि तला सु नीली पु बने नीली पाई तमे दुनो पुसिबुल है

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
1: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमरीका के सेनेट में पारित, और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोने

0: पानीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमताओं को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक है। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
2: इस कॉन्वोकेशन में 3,000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
1: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट। यूपीआई के जरिए लेन देन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेन देन देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक एफसीआरए पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
3: We have seen the comments.
4: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
3: रेगुलेट द फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स।
1: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं।
4: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
1: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
3: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
4: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान QR कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर OPD रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के OPD में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद कनक। आज

0: अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, एनटीए के ही तीन विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, सीबीआई का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, एनटीए के तीन विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, एनटीए के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से सीबीआई ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी सीबीआई जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है, राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर भारी जलभराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, एफसीआरए पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। यूपीआई लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to present IIT Delhi's highest honours to meritorious students during its convocation ceremony today. UPI transactions to remain free for consumers and small merchants, clarifies Apex Digital Payments Body PCI. India rejects objections raised by a US lawmaker on proposed FCRA bill, says legislation is country's internal matter. Jharkhand government holds first formal talks with protesting students over alleged irregularities in recruitment examinations. US Senate passes Russia sanctions bill seeking 100% tariff over five countries. And heavy to very heavy rainfall likely over East Rajasthan and Odisha today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. He will address over 3,000 graduating students, including 587 PhD scholars, who will be conferred their degrees during the ceremony. We have more from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi will present the institute's most prestigious honours, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Perfect 10 Gold Medal to the meritorious students during the ceremony. Further, Mr. Modi will also inaugurate Param Pragya, an AI-powered high-performance supercomputing facility established at the Sonipat campus of IIT Delhi. The state-of-the-art facility is expected to significantly enhance the institute's capabilities in AI, data science, advanced computing and interdisciplinary research. In a social media post, the Prime Minister has said that IIT Delhi has always made a rich contribution in the fields of research and innovation. Mr. Modi said that he looks forward to being among the students and teachers of this pioneering institute. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu has thanked Prime Minister Modi after the two leaders reviewed progress in various aspects of partnership. Mr. Netanyahu wrote in a social media post responding to Mr. Modi's post regarding the conversation between the two.

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

वर्षा के मी चुएंदुनिक था लद्दाख आकाशवाणी दि फलंग आसन आसन कपचे थांगा वर्षाई दो लबांग सुंग बंग माई मीटिंग पांगरी पांग दोन महांग के थे किथी के जांग के जोर के नाम कुलारा की मिकांगपु हेन की मिकांगपु चुजुन चमांकान रोंग केयर आरोंग अजे बिहू क्रिसमस निंकान की मिया हिरजुमी लपेन अनपार्टा कप्रेक आसन आसन आलाम पचे थांग जी लिपुते लद्दाख आकाशवाणी दि फुअलोंग नंग हुमरी इक्तामी मोबाइल पेंजों से चिंकी इक जी पुलोते मोबाइल नंबर के 9476880085 लापेन 9101008242 हेनलो

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मोर नाम अनिता रानी दास, थाना बागबर, डिस्ट्रिक्ट बरपेटा। तो हमारे धान खेती भालो खेती नष्ट है, नष्ट होले एक जो पैसा दे तो आमार लाभ है, बाकी खेतियों को लेको लाभ तो पाने आम जन पाल
2: खरीफ फसल बीमार बाबे शीघ्रे पंजीकरण कराओ।
3: बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जनसेवा केन्द्र सहित जोगाजोग करक।
2: फसल बीमा सम्बन्धे तथ्य पातिर बाबे हेल्पलाइन नंबर 1447 लई कॉल करक।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: जिलार रहरूप
6: लाके आकाशवाणी डिफो जैमेके बमलाके एफ एम बैन अलंग पेन मेघहर्स फारोई सिरा तक बड़ा सिर कैप लापेन नांगलीटूम न्यूज ऑन एयर एप आलंग पेंता जैमेक आर्जुई लंगजी आदुंथु हिंदी डेट लंग री चिंहन अलून जैमेक आंगडें अलंग पेन के चें सी अलून आर्जुई सिनां सुनिधि चौहान किलोन अलून आलून लामथे लाके ए वतन तंगते लबांग सोलून आर्जुई सिनां

लपुआ नपर्णांग लिटुम लता मंगेशकर के लोनालोन ए मेरे वतन के लोगो पु आर्जो एक लंग तांगलो आदन थु आलोन आर्जो एक सिनंग आलोन अलाम थे लके सुनो गौर से दुनिया वालो किलो नबांग शंकर महादेवन उदित नारायण लपेन महालक्ष्मी।

0: lapuan apor nangli tum sor lo se ang tong pua jai mek ang deng along pen iko kla pa putha khom sera rong hang pi la pen hud bang pi hunali teron pi atomang bong chi hu chi put ar ji long tang lo lake akashwani dipu non studio ghoriya por por phai kri sira mini thong ke pleng ik tang lo la si nangli tum mumbai pen ke pacheta vivid bharati ajai mek ar ji long po
1: सही जगह तो असरदार शब्द तो ये बहुत महत्व की बात मैंने उनसे सीखी और मैं कमेंट्री बॉक्स में लेकर आया था 1979 में जब इंग्लैंड गया तो उनको अपने कमेंट्री बॉक्स में लेकर आए थे तब उन्होंने एक बात कही थी जो मैं कभी नहीं भूलता उन्होंने कहा हर शब्द का एक चित्र होता है
2: वाह
1: जैसे आपने कहा कि ही ड्राइव्स थ्रू द कवर टू फोर रन्स तो इसका

0: कि उसने हल्के से खेला है, और जब आप कहते हैं कि ड्राइव थ्रू दी कवर फोर रन्स, तो इसका मतलब जोर से खेला है। तो शब्द का एक चित्र होता है,
1: क्या प्यारी
0: तो
1: बात
0: ये
1: है।
0: शब्द का चित्र के रूप में जब आप खींचेंगे तब आपकी कमेंट्री ऐसा लगेगा सजीव चित्रण होगा। तो ये बात मैंने उनसे सीखी,
1: जी
0: और अपनी कमेंट्री में मैं लगातार सीखता, आज भी सीखता हूँ, कई चीजें सीखने को मिलती हैं, तो ये उसमें आप बेहतर होते हैं। और इंसान होने का सबूत क्या है, अच्छे इंसान होने का यही है कि आप निरंतर सीखते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, जिज्ञासु रहें,

0: उसमें आप बेहतर होते हैं। और इंसान होने का सबूत क्या है, अच्छे इंसान होने का? यही है कि आप निरंतर सीखते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, जिज्ञासु रहें, तभी तो आप भविष्य की तरफ देख रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: ये अन्यथा उम्र आपको मार देगी। तो लेकिन उसको जीतना है तो यही करना है कि आप आगे बढ़ते रहें, बेहतर होते रहें, और जो आपको सुन रहे हैं उनको लगे कि भाई वो भी बेहतर अनुभव कर रहे हैं जब सुन रहे हैं आपको।
1: क्या प्यारी बात है। क्रिकेट कमेंट्री के अलावा जीवन में आप और क्या करते रहे हैं? आपका प्रोफेशन क्या रहा है?
0: नहीं, वैसे तो मैं इंजीनियर हूं, और मैं एक बात जानता हूं, भारत जैसे देश में अगर आप व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो तो लोग आपकी कला को भी ठीक से नहीं आंकते हैं। सच्चाई है। देखिए, लाख लोग कहें कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि आपको व्यावसायिक रूप से भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। और ये हर कलाकार को समझना चाहिए कि वो एक कलाकार ही नहीं है, एक परिवार का हिस्सा भी है, परिवार का एक व्यक्ति भी है, वो किसी का पति भी है, किसी का पिता भी है, किसी प्रेमिका का प्रेमी भी है। ये तमाम चीज़ें उसको ध्यान में रखनी चाहिए, और वो जिम्मेदारियां भी उसकी है। अगर पिता ने उसके प्रति कोई सपना देखा है व्यावसायिक रूप से सफल होने का, तो वो भी एक आपकी जिम्मेदारी है कि वो सफल सिद्ध हो।
1: जी
0: और साथ में आपकी कला को तो आगे बढ़ाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे क्षेत्रों को आप छोड़ दें तो फिर जीवन असफल हो जाता है, लोग आपकी गणना या आपका अंकन ठीक से नहीं करते। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बहुतेरी भूमिका। तो मैं अब जैसे शोरूम है हमारा इंदौर में, 150 आदमी काम करते हैं,
1: जी जी
0: जहां एक 15 रुपये महीने के मकान में किराए से रहते थे, और आज 4 शोरूम्स हैं हमारे, कुल
1: जी
0: मिलाकर 150 आदमी काम करते हैं यहां से वहां तक, और बेदाग, यानी कि बिल्कुल बेदाग जिंदगी, अभी तक किसी का चुकाना बाकी नहीं। तो ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये आपके जीवन जीने के दृष्टिकोण को और जीवन की सफलताओं को नए पैमाने प्रदान करती है।
1: बिल्कुल। यहां एक और दिलचस्प सवाल मेरे जहन में था कि आपने तमाम देशों की यात्राएं की क्रिकेट कमेंट्री करते हुए, सबसे यादगार और दिलचस्प यात्रा कौन सी थी?
0: नहीं, दो बातें मैं जरूर यहां कहना चाहता हूं। एक तो ऑस्ट्रेलिया
1: जी
0: मैं गया था, सबसे अच्छी जगह मुझे वही लगी, ऑस्ट्रेलिया। 3 महीने का दौरा था 1977-78 में, और मैं भूलता नहीं कि वहां पर जो कीथ मिलर हैं वो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए कमेंट्री कर रहे थे अंग्रेजी में,
1: जी
0: उनके फोटो में एल्बम में बचपन में लगाया करता था। कीथ मिलर यानी क्रिकेट के ऐसे व्यक्ति जो अगर 10 ऑलराउंडर्स ऑल टाइम बेस्ट अगर गिने तो कीथ मिलर का नाम उसमें लेंगे। तो एक दिन मैं वहां ऑस्ट्रेलिया में होकर आ रहा था, कई यंगस्टर्स भी जो होते हैं ना, जवान लड़के लड़कियां आते थे, कि एक लड़का पता नहीं किस भाषा में बहुत जोर से मुंह चला रहा, बहुत तेजी से मुंह चला रहा, ये बातें बड़ी फैल रही थी। और 20-20 लोग हमारे कमेंट्री, 20-30 लोग इकट्ठे हो जाते थे ऑस्ट्रेलिया के, कि अजीब, क्योंकि दुनिया में अंग्रेजी के अलावा कोई कमेंट्री होती नहीं थी उस समय।
1: जी
0: तो एक दिन मैं कमेंट्री का सेशन करके जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, देखा कीथ मिलर पीछे खड़े हैं, तो
1: अरे
0: मेरे
1: बाप
0: तो
1: रे।
0: होश उड़ गए, तो मतलब पसीना पसीना हो गया। मैं छोटा था, तो उम्र
1: जी
0: में
1: जी
0: 29 साल का था। तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, मुझे एक तरफ ले गए और मुझे कहा कि बॉय, आई हैव नॉट अंडरस्टूड ए सिंगल वर्ड ऑफ वॉट एवर यू सेड, बट वॉट एवर वेंट इन टू माई ईयर्स वॉज वेरी स्वीट।
1: वाह
0: तो
1: वाह
0: ये
1: वाह
0: जो
1: वाह
0: मैं
1: वाह
0: समझता हूँ जिंदगी में एक बहुत बड़ा ये कमेंट था, कि भाई वो जो आदमी आपकी भाषा नहीं समझ रहा, वो आपको कह रहा है कि आप उनके कान में मिश्री जैसी आवाज आ रही। और एक और कमेंट जो मुश्ताक अली साहब ने, महान खिलाड़ी,
1: इंदौर के
0: 1936 इंदौर के, मुश्ताक अली साहब और मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे 1936 में, ऐसे व्यक्ति जो पहली बार इंग्लैंड में जिन्होंने शतक लगाया,
1: जी
0: पहले भारतीय। तो उन्होंने एक बार कही कि लता मंगेशकर ने गायकी में, ईश्वर ने भेजा उनको, मुझे बैट लेकर भेजा बल्लेबाजी करने के लिए, और सुशील दोषी तुमको भेजा है हिंदी की कमेंट्री करने के लिए।
1: वाह वाह वाह वाह
0: ये
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: बड़ा कमेंट। और तीसरा सबसे बड़ा कमेंट जो मुझे कहा आकाशवाणी के स्टेशन डायरेक्टर, जिन्होंने पूछ मुझे पहले भगाया था ना,
1: जी जी
0: उन्होंने कहा था कि यार तुम्हारी आवाज एक ईमानदार आवाज है।
1: अद्भुत।
0: तो मैं ये समझा कि तरह तरह की आवाजें, मीठी आवाज, मोटी आवाज, बच्चन बैरीटोन, पतली आवाज है ना, सुरीली आवाज, लेकिन ये ईमानदार आवाज, आज भी सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इससे बड़ा कमेंट मैंने अपनी जिंदगी में सुना नहीं। तो
1: वाह
0: ये जो बातें मैं कभी भूलता नहीं, तो ये तमाम चीजें। और एक किस्सा मैं जरूर सुनाना चाहता हूं,
1: जी
0: कि
1: जी
0: वो जो भाषा की बात कर रहा था, लालित्य की बात कर रहा था।

0: हिंदी भाषा के में।
1: जी जी जी
0: फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पर सुनील गावस्कर 86 रन पर नॉट आउट थे और शाम का वक्त था, तो मैंने, मेरे हाथ में माइक्रोफोन था, मैंने कहा शाम ढल रही है और मैदान पर खिलाड़ियों की परछाइयां लंबी हो रही हैं,
1: बिल्कुल
0: लेकिन भारत का सूरज सनी गावस्कर अपनी पूरी चमक के साथ विद्यमान है।
1: आहा हा
0: तो
1: हा
0: वो
1: सुंदर
0: इतना अच्छा लगा, अखबारों में भी छपा कि इतना बढ़िया वर्णन, एक तरफ डूबता हुआ सूरज, दूसरी तरफ भारत का सूरज जो अभी भी विद्यमान है चमक के साथ। तो ये कब हो सकता है? जब आप साहित्य पढ़ते हो।
1: जी जी जी
0: अगर आप साहित्य नहीं पढ़ते हो, रोमन लिपि में आप समझते हो हिंदी, तो ये बातें आप जिंदगी में कभी नहीं कर
1: और
0: सकते।
1: उस लेवल पर मैच को महसूस करना ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण
0: सबसे
1: बात
0: बड़ी बात जो आपने कही ना अभी, कि जो आप महसूस करोगे तो महसूस कराओगे,
1: जी
0: ये
1: जी जी
0: जिंदगी में अगर आपने रखा है तो आप सफल कमेंटेटर या जो भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो वो उसमें कामयाब होंगे।
1: बिल्कुल। सुशील जी, कितना सुंदर वर्णन शाम का आपने किया, और मुझे इस पर एक गाना याद आया जो मैं जानता हूं कि आपका पसंदीदा है, सुहानी शाम ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे।

0: सुशील जी, सबसे पसंदीदा क्रिकेटर्स कौन से रहे आपके?
1: नहीं, मैं सुनील गावस्कर को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि वो स्वाभिमानी भी है, तकनीक उनकी अद्भुत, ऐसी तकनीक मैंने किसी की नहीं देखी। बिना हेलमेट के आप वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों का सामना कर रहे हैं, और ऐसे पिचेस पर ढकी हुई नहीं है
0: बिल्कुल,
1: और बाउंसर की कोई सीमा नहीं है, आपके शरीर पर आक्रमण कर रहा है आदमी।

0: और एक नहीं चार चार एक साथ। वो ऐसे वक्त पर उन्होंने क्रिकेट खेला जब दुनिया में सबसे खूंखार बोलर्स दुनिया में थे। आप
1: यस
0: वेस्टइंडीज में देखे कि एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, मेलकम मार्शल, यू नो कॉलिन क्राफ्ट, या पाकिस्तान में देखो तो इमरान खान और वसीम अकरम, इंग्लैंड में देखे तो जॉन स्नो, है ना, तो ये तमाम, या ऑस्ट्रेलिया में देखो तो टॉम्पसन और लिली, इतने खूंखार बॉलर एक समय दुनिया में कभी भी नहीं रहे।
1: जी जी
0: उन
1: जी
0: सब बॉलर्स को अनढके विकेटों पर, पिचों पर, उन्होंने बिना हेलमेट के जिस तरह से खेला, दुनिया का कोई दूसरा को नहीं खेल पाता। तो मैं समझता हूं कि उनसे बड़ा कोई तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज, भारतीय क्रिकेट को स्वाभिमान जिसने दिलाया, ये तो तेज गेंदबाजी के खिलाफ भारतीय बैटर जरा घबराते थे,
1: जी जी
0: वो स्वाभिमान उन्होंने दिलाया भारत को।
1: जी जी और विश्व क्रिकेट में कौन पसंदीदा रहे हैं?
0: नहीं, विश्व क्रिकेट में जो एक तो ये है कि डॉन ब्रेडमैन के बड़ा तो कोई रहा ही नहीं, ऐसा जैसा इयान चैपल ने भी कहा कि उनके साथ किसी की भी तुलना करना यानी कि क्रिकेट का ही अपमान है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि उनको मैंने खेलते भी नहीं देखा, उनसे
1: जी
0: मुलाकात जरूर हुई
1: जी
0: लेकिन उन्हें खेलते भी नहीं देखा,
1: जी
0: लेकिन उनके रिकॉर्ड से बता रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अगर बैटर्स कहें तो सचिन तेंदुलकर,
1: जी
0: बहुत बड़े बल्लेबाज वो भी अपने आप में। और सबसे बड़ी बात कि दुश्मन की गली में खेल को ले जाकर खेलना,
1: वाह वाह
0: अगर
1: वाह,
0: किसी व्यक्ति में था तो वो सचिन तेंदुलकर,
1: बिल्कुल
0: कि वो खेल की धारा को मोड़ देते थे।
1: जी। 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता, उस वक्त आप कहाँ थे और
0: नहीं, उस
1: क्या?
0: समय तो कमेंट्री हुई नहीं हिंदी में भी, क्योंकि उस समय क्या था कि किसी ने भी गंभीरता से लिया ही नहीं था कि जो वनडे क्रिकेट है ना, ये कोई महत्वपूर्ण क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी खुद ही ने टिकटें कोई अमेरिका की ले ली थी सेमीफाइनल की वक्त ही, उनको लगा कि जीत ही नहीं पाएंगे।
1: जी
0: तो ये तो हम लोग तो कमेंटेटर थे तो हिंदी की कमेंट्री नहीं हुई उस समय। क्या कहते थे भारत में कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट है वो शास्त्रीय क्रिकेट है, और वनडे क्रिकेट जो है पायजामा क्रिकेट है।
1: जी
0: बाद में T20 क्रिकेट को चड्डी क्रिकेट कहना शुरू कर दिया, और
1: जी
0: T10 क्रिकेट जो आया उसके बाद तो हमने सोचना ही बंद कर दिया।
1: बिल्कुल, कुल मिलाकर जो टेस्ट क्रिकेट है वो सही मायनों में क्रिकेट है।
0: रेड बॉल क्रिकेट जो होता है ना,
1: जी
0: सही, क्योंकि गेंद स्विंग और सीम होती है और परिस्थितियां ऐसी रहती हैं जो बॉलर और बैटर को बराबरी का मौका देती हैं। इसी कारण वो जो बड़े खिलाड़ी रहते हैं वो टेस्ट क्रिकेट को असली क्रिकेट मानते हैं।
1: जी बिल्कुल। सुशील जी, बहुत सारी किताबें आपकी हैं और उसमें जो सबसे मशहूर किताब है वो है आंखों देखा हाल, जो आपकी एक तरह से बायोग्राफी है। उसके अलावा भी क्रिकेट पर बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं, अखबारों में आपके कॉलम्स लगातार हम पढ़ते हैं। ये जो लिखने वाला मामला है, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए।
0: नहीं, ये मैं 1966 से ही लेखन भी करता हूँ।
1: जी
0: मेरा पहला लेख 1966 में छपा था, कमेंट्री तो मैं 1968 में मैंने पहली की, लेकिन 1966 में मेरा पहला लेख छप चुका था। तो लेखन के प्रति और हिंदी साहित्य के प्रति मेरी आस्था और लगाव लगातार बना रहा, और इसी कारण मेरी भाषा हमेशा ठीक ही रही हिंदी के हिसाब से। तो ये मैंने बहुत सारी 15 किताबें, जैसे आपने जिक्र किया अभी, कुछ 15 किताबें, और सबसे मेरी इच्छा थी कि एक किताब ऐसी भी लिखूं जो क्रिकेट कमेंट्री पर हो।
1: जी
0: तो
1: जी
0: क्रिकेट कमेंट्री एक कला एक विज्ञान नाम से पुस्तक एक मैंने लिखी, शायद दुनिया की पहली पुस्तक है जो कमेंट्री पर, कमेंट्री कला के हिसाब से
1: जी
0: लिखी हुई। तो वो किताब का अंग्रेजी अनुवाद भी हो गया है और वो किताब की 65,000 प्रतियां बिक चुकी हैं,
1: वाह
0: तो जो बहुत बड़ा, क्योंकि आज के ज़माने में लोग पढ़ते कम हैं,
1: जी
0: फिर भी 65,000 कॉपियाँ उसकी बिक चुकी हैं। तो एक ये जो मुझे लगता था कि जो काम मुझे करना चाहिए वो काम मुझे कर देना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम किताबें भी हैं और कॉलम्स भी लगातार अभी भी आप लिख रहे हैं।
0: हाँ, करीब 5,000 से ज़्यादा लेख और कॉलम्स, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि ये मुझे पूर्ण बनाती है।
1: जी
0: ये कॉलम लिखना, उसमें पैसा तो कोई इतना रहता है नहीं, पैसा तो रहता है मुफ्त में तो मैं लिखता नहीं,
1: जी
0: लेकिन ये भी है कि एक जो कला ईश्वर ने आपको दी है उसको बराबर पूरा करना चाहिए, और दूसरी बात ये कि लोगों तक आपके विचार बांटना चाहिए, उससे पता चलता है कि लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हो। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को तुर्रम खां समझें और
1: जी
0: लोग आपको नहीं समझें तो क्या अर्थ है। तो ये
1: जी
0: कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की प्रतिक्रिया भी आप समझें।
1: जी जी आपका अपना एक डिसिप्लिन और आपकी अपनी एक फिटनेस भी एक एनवायबल है, उसके बारे में बताइए।
0: नहीं, जीवन में देखिए उत्साह,
1: जी
0: और दूसरी बात, आप जब तक क्रिएटिव हैं यानी कि आप रचनात्मकता जब तक आप में हैं तब तक आप जवान हैं।

0: रचनात्मकता जिस दिन गई और जिस दिन आपको लगा कि आप समाज के लिए उपयोगी नहीं हैं, तब आप वेजिटेबल हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूं कि रचनात्मकता आज भी मुझ में सीखने की वही इच्छा शक्ति, अच्छी चीजों के प्रति प्रशंसा का वही भाव, और सबसे बड़ी बात कि चुनौती को हर बार स्वीकार करने की इच्छा, ये आज भी बनी रहती है। और जब तक ये बनी है तब तक मैं अपने आप को काफी स्फूर्तिवान और काफी जोश मुझ में रहता है, कुछ भी नई चीजें करता ही रहता हूँ। अभी
1: जी
0: भी मेरे मस्तिष्क में 2-3 किताबें लिखने का है, तो जो भी साथ में है, एक बहुत लंबी योजना नहीं बनाता हूं, जो
1: जी
0: योजना बनाई उसे पूर्ण करो और कार्य रूप में बदलो।
1: यहां गाना सुनते हैं, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।

0: आपने आज इस बातचीत में एक बहुत सुंदर वाक्य कहा था कि जंगली सपने भी सच होते हैं, वाइल्ड ड्रीम्स। इस बातचीत को दुनिया के कोने कोने में हिंदी भाषी लोग सुन रहे हैं, देश के कोने में किसी छोटे कस्बे में आंखों में सपने लिए कोई नौजवान सुन रहा हो, उससे भारत के महान क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी क्या कहना चाहेंगे?
1: नहीं, बस ये कहता हूं कि अपने आप को एक तो कम मत आंको। देखिए, मेरी तरफ आप ध्यान दें, मेरी कहानी की तरफ ध्यान दो, तो बचपन में मुर्गा बनने की कहानी, मास्टर से डंडे खाने की कहानी और सप्लीमेंट्री लाकर पास होने की कहानी। एक मामूली आदमी भी अगर इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कमेंटेटर बन सकता है और पद्मश्री की उपाधि तक भी पहुंच सकता है, तो आप लोग तो बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े।

0: ओ भाई लोगों, आप लोग तो आगे बढ़ ही सकते हो और दिखा दो कि आप में दम है, क्योंकि हर व्यक्ति में संभावना अनंत रहती है, संभावनाओं को पहचानने की जरूरत है।
1: जी, जिस पल पद्मश्री की घोषणा हुई आप कहाँ थे और इस खबर के बाद किस तरह की कैफियत आपकी और आपके परिवार की थी?
0: नहीं देखिए, 2016 में मुझे पद्मश्री प्राप्त हुआ और मैं तो दिल्ली में कमेंट्री कर रहा था,
1: अच्छा
0: मुझे पता नहीं था कि पद्मश्री मिल सकता है। तो मेरे बेटे का फोन आया कि कुछ लोग आए और पूछताछ कर रहे हैं, और पता नहीं कि क्यों पूछताछ कर रहे हैं, वो उनको लगा कि कहीं छापा तो नहीं पड़ रहा, तो वो घबराया तो मुझे फोन किया, तो मैंने कहा मुझे बात कराइए। तो मैंने पूछा कि क्यों, क्या पूछताछ करना चाहते हैं, दिल्ली में था मैं कमेंट्री कर रहा था।
1: जी
0: तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे ही कुछ पूछना है, तो भारत सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं उन्होंने।
1: जी
0: और जब भोपाल आया, वहां से ट्रेन से आया
1: जी
0: भोपाल उतरा मैं, तो भोपाल से फिर मुझे एक दिन पहले जब उतरा तो किसी का फोन आया दिल्ली से कि आपको पद्मश्री देने की घोषणा हुई और आपको स्वीकार है क्या। तो मैंने कहा भाई इतनी बड़ी अगर उपाधि और देश अगर इतना प्यार कर रहा है, तो मैंने कहा बिल्कुल स्वीकार है। तो ये हुआ, फिर इंदौर आ गया, फिर घर पे मैंने फोन से बताया माता पिता। मेरी माँ के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, बड़ी
1: जी
0: महत्वाकांक्षा थी,
1: जी जी जी
0: महत्वाकांक्षी व्यक्ति, उनका मुझ पर बहुत प्रभाव।
1: जी
0: पिताजी बहुत सीधे साधे, महत्वाकांक्षी नहीं थे, बच्चे का सपना पूरा करना बस, और माँ बहुत महत्वाकांक्षी, बच्चे को आगे बहुत नाम कमाना है, गरीबी में नहीं रहना है, ये उनको बड़ा था, और उनका सपना भी मुझे पूरा करना था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मेरी माँ तब जिंदा थी,
1: जी जी
0: उनके जीते जी पद्मश्री मिल गया। तो उन्होंने एक बात कही कि जिस माँ के बेटे को पद्मश्री मिल गया हो, उसको अब जीवन में और क्या चाहिए।
1: वाह
0: देखिए माँ होती है तो ऐसी बातें करते हैं, तो कई बार आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन ठीक है, जीवन है, बहते रहने का काम है।
1: जी, आपको मिला पद्मश्री, हिंदी क्रिकेट कमेंट्री का सम्मान माना जाना चाहिए।
0: नहीं बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूं कि सम्मान जो था वो हिंदी को मिला है, और मुझे खुशी है कि हिंदी भाषा को जो पहले दोयम दर्जे की बात मानते थे ना कमेंट्री के क्षेत्र में,
1: जी
0: उसमें इतनी पहचान मिलना, तो हिंदी कमेंट्री के प्रति लोगों की आस्था और लोगों की श्रद्धा और लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है, तो अच्छा लगा कि हिंदी के लिए कोई कार्य मैं कर पाया।
1: जी सुशील दोषी जी, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपसे ये लंबी बातचीत कर पाया। हमसे ये वादा कीजिए कि विविध भारती पर आप फिर आएंगे और हम फिर लंबी बात करेंगे।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, निश्चित रूप से। और आपसे बात करके मुझे तो आपसे शिकायत भी रही कि आपने कमेंट्री क्यों नहीं की, आपकी आवाज इतनी बढ़िया है, लेकिन अच्छा ही किया, मैं नहीं चाहता था कि ऐसे ऐसी कंपटीशन मुझे ही मिले।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।
0: धन्यवाद।

जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी से लंबी बातचीत अभी आपने सुनी, आज दूसरा भाग था। बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर जरूर लिखें, मैटिनी शो की पोस्ट पर, या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप अपनी राय दे सकते हैं, या फिर vbnsmumbai@gmail.com पर अपनी राय दीजिएगा। जो

0: समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पढ़ाई के बाद छात्र जीवन की नई शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली कैंपस में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आप केवल डिग्री नहीं अपने सपने लेकर यहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 587 पीएचडी शोधार्थियों को सम्मानित किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। इसी दौरान चलवांज मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इस घटना में परिजनों को होने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट रूस द्वारा रात में किए गए मिसाइल हमलों में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। आज तड़के कीव के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये हमले हुए। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप के 3रे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2रा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हेबेंस ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। इस गाने से शुरुआत करते हैं। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन, शोले।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी अन

आ रही हैं विविध भारती पर। सुंदरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे दिन के 12:11:35 और अगर आपके शहर में बारिश है तो ये गाना आपके लिए।

0: है दोना
1: भरो इंतजार आएगा वो दिन थोड़ी देर है
0: कब आएगा अरे अरे अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे, अरे।

0: बारिश तेज है, अरे अरे अरे भीग जाएंगे, अरे मैंने कहा बारिश तेज है, ये भीग जाएंगे।
1: दो झूठ फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में था। एमजी हशमत के बोल थे।
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे

यादों की महफिल में अब गूंज रही है किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम है वारंट। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा हैं और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। परेशान हूं मैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
1: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
0: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।

0: नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अब कहां जाएं हम?
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहतनामा,
0: किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम साहिब बहादुर। राजेंद्र कृष्ण के बोल मदन मोहन की तर्ज।

मेजबान आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी

आ रहे हैं महबूबा विविध भारती पर सुंदरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे भूपिंदर सिंह की आवाज फिल्म का नाम मौसम

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थीं। फिल्म का नाम जूली, आनंद बख्शी, राजेश रोशन। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आ रही है किशोर कुमार की ही आवाज में।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर।

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज की इबारत विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट हो चुकी है और आप सभी ने पढ़ी ही होगी। जिन श्रोताओं ने फेसबुक पोस्ट नहीं देखी है उनके लिए इबारत यहां पेश है। इतने दिन कहां थे, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई, ये कैसी बातें कर रहे हो, घनी थी उलझन बैरी अपना मन, अरे खुलकर कहो ना, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए, ओफो कहना क्या चाहते हो, मुझको अभी चुप रहने दो, पहेलियां बुझाना छोड़ो ना, हम क्यों शिकवा करें झूठा, अरे किससे शिकवा हुआ है, क्या बात है, इंसान मोहब्बत कर बैठा पर ये तो अच्छी बात है ना, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है, फिर वही, अरे खुलकर कहो ना, कहने से हो मलाल तो हम क्या जवाब दें, देखो ये ठीक बात नहीं है, इस तरह उलझी बातें कौन करता है, बातें हैं बातों का क्या, हाय इतना दुख मेरी तो आंख भर आई, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, अब तुम हद कर रहे हो, अपनी तो यह आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, चुप रहो, अब ऐसी बहकी बहकी बातें की तो बातें बंद हो जाएंगी हमारी, समझे भाई, यही है आज की इबारत। और इस इबारत में बहुत सारे गाने बहुत सारे शब्द समाये हुए हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने बाकायदा गानों को एक अच्छी तरीके से पहचान भी लिया है, लेकिन एक जो नहले पे दहला आया है उसे कार्यक्रम में सबसे पहले शामिल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से एक इबारत लिखी है, क्या बात है बड़े छाए हुए आजकल, क्यों आपको पसंद नहीं है, हमें क्यों पसंद नहीं होगा, आखिर आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो, वही तो हमारे लिए आप श्रोतागण ही सब कुछ हो, बस इसी बात ने तो हमारा दिल छीना है। विविध भारती से एक संवाद, एक कमाल है भाई, कमाल है, यानी नहले पे दहला मार दिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे श्रोताओं की बातें, एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि यादों की महफिल में बहुत ही बढ़िया गाने आपने सुनवाए, इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा कर देते हैं आपका। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता हैं, जरा देखें कि हमारे और श्रोता क्या कह रहे हैं। कुछ श्रोता हैं जिन्होंने बाकायदा पूरे गानों की लिस्ट प्रदान कर दी है और यहाँ भेजा है। इसके अलावा कई ऐसे श्रोता हैं जो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि इतने दिन तो हम कहीं नहीं थे, विविध भारती के संग थे और ऐसे ही विविध भारती हमारे साथ चलती रही, गुनगुनाते रहे, दिल पर राज करते रहे, सुकून देते रहे। एक और श्रोता कहते हैं, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, हम विविध भारती सुनते रहे तो दिन खुशनुमा रहे। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि अप्रत्याशित थीम है और बहुत ही मजेदार गाने सुनाई देने वाले हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि यादों की महफिल में गाने अच्छे सुनाई दिए थे। एक श्रोता ऐसे हैं जो बाबा अमरनाथ कश्मीर के पवित्र स्थान के बेस कैंप बालटाल में हैं और वहां से आगे रवाना हो रहे हैं। शुभकामनाएं आपको हम सबकी तरफ से, और वहां भी आप अगर विविध भारती से जुड़े हुए हैं तो इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम का सिलसिला इस गाने के साथ। और आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि क्या आम बोलचाल की भाषा में आप भी गानों का इस्तेमाल करते हैं, और अगर करते हैं तो किस तरह से करते हैं।

0: चोरा।
1: योगेश का लिखा ये गाना मुकेश की आवाज सलील चौधरी की तर्ज आनंद फिल्म, और एक श्रोता ने यह कहा है कि ये गाना पूरी तरह से राजेश खन्ना के साथ जुड़ा हुआ। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज जो पहला गाना आपने बजाया सुरीला सफर कार्यक्रम में, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, पतिदेव इस गाने को बहुत अच्छे से गाते थे, पहला गाना यही था जो उन्होंने मुझे गाकर सुनाया था। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि योगेश जी क्या बात है, बेहतरीन आगाज इस कार्यक्रम का हुआ है, और हम तो अपनी बातचीत में अक्सर ही फिल्मी गीतों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि हम भी बातें करते हैं तो गानों का और फिल्मी डायलॉग्स का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो पूरे दिन कोई ना कोई गाना गाते रहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में भी गाने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आम बोलचाल की भाषा हमारे अस्तित्व का आईना है, व्याकरण की दृष्टि से भले शुद्ध ना हो। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बोलचाल की भाषा में गाने तो आजकल मुहावरे की भूमिका अदा करते हैं, जैसे अगर कोई देर से आया तो हम कहते हैं बड़ी देर भाई नंदलाला। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं हम अभी इसी गाने को सोच रहे थे और ये गाना प्रसारित हो गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम अभी से घोषित कर देते हैं कि आज का जो सबसे प्यारा गीत है वो यही है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आज जो है प्रश्न पत्र का स्वरूप कुछ बदला हुआ लग रहा है, लेकिन ये बदलाव बहुत अच्छा है। इसके अलावा

कुछ और श्रोताओं की बातें शामिल करते हैं। देखिए, कई श्रोता ये कहते हैं कि हमारे कमेंट्स शामिल नहीं होते। इतनी लंबी धारा कमेंट की है कि मैं एकदम एकदम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे गानों के बोल हमारे कई श्रोताओं ने लिखे हैं। अब सभी श्रोताओं के लिखे गाने के बोल बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप सभी के प्यार का शुक्रिया। इतना सारा टाइप करके आपने भेजा, अपने गानों को बिल्कुल ठीक पहचाना है। और एक श्रोता ये कह रहे हैं कि जैसे ही पेज खोलकर सुबह देखा, उस वक्त मैं नाश्ता कर रहा था, इबारत पढ़कर चाय और नाश्ते का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मुझे याद आया कि कैसे किशोर कुमार की याद के दिन आपने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विविध भारती बड़े काम की चीज़ है, कहीं दूर से गम आ जाए, रेडियो से मेरा मन बहल जाए, या रेडियो बजाओ दुनिया वालों या मुझे अभी चुप रहने दो। क्या बात है, इन्होंने अपनी तरीके से इबारत लिख दी है। अब जो गाना आ रहा है वो आप सभी के दिल के बहुत ज़्यादा करीब गाना है, और ये जो फिल्म है ये हम सभी को बहुत ही अपनी सी लगती है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री, एक दूजे के लिए। ये फिल्म आपने किस साल में, कहाँ, किसके साथ देखी थी, ये यादें हमारे साथ जरूर बांटिए। और इस फिल्म का सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगता है? क्या आपके शहर में बारिश की फुहारें पड़ रही हैं, या अभी तक आप गर्मी से जूझ रहे हैं? शनिवार की दोपहर 1:12 क्या हाल आपके और आपके शहर के मौसम के?

एक श्रोता ये लिखती हैं कि एक दूजे के लिए जब रिलीज हुई थी तो मैं बहुत छोटी थी, थिएटर में देखी होगी पर याद नहीं है, लेकिन बाद में टेलीविजन पर देखा। जैसे जैसे बड़े हुए इस फिल्म के गानों का जादू सिर चढ़कर बोला, एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ से परिचित हुए और 16 बरस की बाली उम्र से खुद को कनेक्ट किया। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ये गाना दिल के बहुत करीब है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि मिर्ज़ापुर शहर में जब से सावन का महीना लगा है दिन रात झमाझम बारिश हो रही है, इस समय थोड़े बादल और थोड़ी सी धूप है, खुशनुमा मौसम है हमारे शहर का। और इसके अलावा फिलीपींस के एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो 3 दिन से बारिश हो रही है और रेड अलर्ट का सिग्नल आ चुका है। एक और श्रोता ने क्या सुंदर जुमला गाने में सुठाया है, दुनिया में प्यार की एक है बोली, सलाम आनंद बख्शी साहब, क्या बढ़िया लाइन लिखी है। इसके अलावा एक और श्रोता लखनऊ से लिख रही है कि सूर्य देव तीक्ष्ण ताप बरसा रहे हैं, भाई हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके शहर में भीषण वृष्टि हो और तीक्ष्ण ताप की जगह शीतलता आप पर हावी हो जाए। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो पानी पानी पानी हो गया है, भाई ये जो पानी पानी पानी है इससे मुझे ऐसा लगा जैसे आप गा रहे हैं गाना आज ब्लू है पानी पानी पानी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रही है कि ये गीत मन की गहराई में बसा हुआ है, प्रेम के कितने रंग हैं और सादगी भरे बोल इस गाने का आभूषण है। एक श्रोता अपने पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं गाड़ी से और गाड़ी में सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है, सभी लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, उनके परिवार के बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें ये जानकर। बहुत सारी श्रोता हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई ये जो लिफ्ट वाला गाना है मेरे जीवन साथी प्यार किए जाए ये बड़ा ही अच्छा लगा था, 1981 में कॉलेज से भागकर दोस्तों के संग पहला शो मैटिनी शो देखा था। अब ये जो कॉलेज से भागकर फिल्म देखने की बात है ना, बस मुझे लगता है कि इसी बात की डोर पकड़ के आगे चलते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉलेज से भागकर पिक्चर देखी थी, कॉलेज से भागकर कौन सी फिल्म देखी थी और क्या किसी को पता चल गया था। और हाँ, अब रेशमा की आवाज गूंज रही है, फिल्म का नाम हीरो, सुभाष घई की बेमिसाल फिल्म जिसमें आए थे जैकी दादा। ये फिल्म कहाँ, किस शहर में, कब, किसके साथ, चोरी से या शाम से देखी थी बताइएगा।

एक श्रोता है जिन्होंने बहुत ही मजेदार बात लिखी है। वो लिखते हैं कि भाई फिल्म हीरो हम लोगों ने कॉलेज से गोल मारकर देखी थी, अब साथ में कौन था ये बात प्लीज मत पूछिए वरना बहुत मार पड़ जाएगी। ठीक है भाई, ये मत बताइए कि साथ में कौन था, लेकिन कॉलेज से भाग कर देखी है, ये बड़ी मजेदार बात है। और बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की यादें देखी साझा की हैं। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि दोस्तों के साथ खुदा गवाह देखने गई थी कॉलेज से भागकर, बहुत मजा आया था और हम पकड़े नहीं गए थे। एक और श्रोता है जो कह रही है कि मिथुन दा की फिल्में तो नहीं देखी लेकिन कैसेट बहुत बजाया करते थे, ये एक बात इन्होंने लिखी है। उसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लंबी जदाई का की बड़ी तारीफ की है। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि क्या गजब कर रहे हैं, सुरीले सफर कार्यक्रम में आपके सारे राज खुलवा देंगे, यहां मेरे बेटी बेटे दामाद बैठे हुए हैं। अच्छा हुआ कि आप नाम नहीं लेते, वरना ये जो कॉलेज बंक करके फिल्में देखने की लिस्ट तो लंबी है। अच्छा हुआ कि इस कार्यक्रम में नाम नहीं आता, वरना सबको पता चल जाता कि हमने क्या किया था अपने जमाने में। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि शहर में थोड़ी सी बारिश भी बहुत अधिक हो जाती है, हम किसानों से पूछो अभी तक धरती में पानी ठीक से अंदर पहुंचा नहीं है और हम मजबूर हैं भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए। आप शहर वाले थोड़ी सी बारिश हुई तो हाथ जोड़ लेते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश गिरी, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि इतनी बारिश हो कि जो खेती है वो अच्छी तरीके से हो सके। एक और श्रोता लिखती हैं कि कभी कभी किसी गीत को हम केवल सुनते नहीं बल्कि वो हमारे भीतर घटित होता है। इस गीत को सुनकर लगता है कि हमारे भीतर एक अंतहीन बयाबान पसरा हुआ है, रेशमा की आवाज़ सबसे उदात्त पलों में ले जाकर छोड़ देती है। एक और श्रोता जो लिख रहे हैं कि मैंने मंदसौर

0: इस्लाम और उज्जैन में बहुत सारी फिल्में देखी हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये राज उजागर कर दिया है कि कॉलेज से भागकर उन्होंने रफू चक्कर देखी थी सहेलियों के साथ कॉलेज बंक करके। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि कॉलेज से भागकर अगर फिल्म देखते तो कहीं फिल्म देखने के काबिल न रहते उस जमाने में, क्योंकि पापा आर्मी में थे और आर्मी थिएटर में 365 फिल्में जरूर देखी सिकंदराबाद में। इसके अलावा एक और श्रोता जलंधर से हैं, वो कहते हैं कि जलंधर के लाल रतन सिनेमा हॉल में हमने फिल्म हीरो देखी थी। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि भाई बारिश तो हुई है और अभी और भी होगी, कहीं बाढ़ कहीं सूखे के साथ, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका असर कहीं गर्मी और कहीं वर्षा ऋतु का प्यार। एक और श्रोता है जिन्हें जुबली टॉकीज याद आ रही है और वो कह रहे हैं कि एक दूजे के लिए उन्होंने 1982 में जुबली टॉकीज में देखी थी। किस शहर का की बात है ये आप अंदाजा लगा सकते होंगे, मैं तो समझ गया हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने बड़ा प्यारा कमेंट लिया कि हमारे शहर में बादल ऐसे घूम रहे हैं जैसे शादी में मुंह फुलाए फूफा घूमते हैं, नजर तो सबको आते हैं मगर काम के नहीं होते। भाई बहुत ही प्यारा कमेंट है। और अब एक ऐसे गाने की तरफ ले जा रहे हैं जो दिल के गुबार को उजागर करता है, जिसमें उदासी लिपटी हुई है। एक बेहतरीन फिल्म का एक शानदार गाना है ये।
1: दीवानों से ये मत पूछो।
0: क्या आप बता सकते हैं इस गाने के गीतकार कौन हैं? इस फिल्म में कई गीतकारों ने गाने लिखे थे, पर ये गाना किसका?

गुलशन बावरा का नाम भी लिखा है, पर ज्यादातर श्रोताओं ने कमर चलल अबारी का नाम लिखा है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि जब आपने ये ऐलान किया था कि गीतमाला कार्यक्रम बंद हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन सुरीला सफर कार्यक्रम जब हमने सुना तो तब से बड़ा आनंद आ रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरी उम्र 38 बरस है पर मैंने सिर्फ दो ही फिल्में सिनेमाघर में देखी हैं, एक बजरंगी भाईजान और दूसरी सुई धागा। ओ हो, सिर्फ दो ही फिल्में। एक और श्रोता है जिन्होंने गुलशन बावरा का नाम लिखा है जो कि गलत

सिर्फ दो ही फिल्में सिनेमाघर में देखी हैं, एक बजरंगी भाईजान और दूसरी सुई धागा। ओ हो, सिर्फ दो ही फिल्में। एक और श्रोता हैं जिन्होंने गुलशन बाबरा का नाम लिखा है, जो कि गलत जवाब है। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि अब ये दौर कभी नहीं आएगा, पुराना माहौल कुछ और था, जो कभी नहीं दोहराया जाएगा। जिन्होंने ये समय दिखा है उनसे भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। कमर जलाल आबादी की बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी। एक श्रोता है जिन्होंने कहा, 11वीं कक्षा में कॉलेज से बंक मारकर सहेलियों के साथ कर्ज आंखियों के झरोखों से, हम किसी से कम नहीं, और ऐसी कितनी ही फिल्में टोपी वाला थिएटर में देखी हैं, गोरेगांव के टोपी वाला थिएटर में। और इसके अलावा एक और श्रोता जिन्होंने लिखा कि दीवानों से मत पूछो, गाने में एक टीस है, मुकेश की दर्द भरी आवाज रूह तक उतर जाती है। और फिर और भी कई श्रोता हैं। एक श्रोता ये कह रहे हैं कि विविध भारती पर सावन से जुड़े जितने कार्यक्रम हुए हैं, उतनी बारिश हमारे यहाँ हो जाती तो मजा आ जाता। इसके अलावा एक और श्रोता हैं, कहते हैं कि भाई बड़ी ही अजीब बात हुई, कल रात आप मेरे सपने में आए, मैं आपको बीमे की किस्त के रुपए दे रहा हूं। भाई ये तो बहुत ही अजीब सपना है आपका। और इसके अलावा एक और श्रोता है कि जिस तरह से आप कमेंट पढ़ते हैं, आपका फनी अंदाज हमें बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कश्मीर में, कहते कि मेरे आंखों के आगे कश्मीर, और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई आंखों के आगे कश्मीर का नज़ारा है और मैं अपने सफ़र पर आगे बढ़ता चला जा रहा हूं और मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूं। ये कितनी प्यारी बात है कि वो अपने सफ़र में भी विविध भारती को लगातार सुनते चले जा रहे हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि भाई आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं, आज कार्यक्रम छूटता हुआ लग रहा था पर हमने छोड़ा नहीं है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लास्ट पीरियड कई बार बंक किया, प्रिंसिपल से डांट खाई और एक बार फिल्म देखी ठिकाना, और पापा से भी डांट खाई। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि भागकर तो नहीं पर दोस्तों के साथ एक बार गई थी, मम्मी को फिल्मों का बहुत शौक है तो मम्मी और पड़ोस की चाची और बहनों और उनकी बेटियों, मतलब उन्होंने पूरी टोली का लिखा है कि इन सबके साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टी के बाद मैं और मेरे दोस्त अपनी साइकिलें कॉलेज में ही छोड़कर पास के सिनेमा हॉल में नूरी फिल्म देखने चले गए थे, बाद में प्रिंसिपल ने हमें बहुत डांटा था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि ट्रेन से सफर करके कॉलेज जाते थे, एक दिन ट्रेन काफी लेट पहुंची, बारिश भी बहुत थी, तब चिच्चोर फिल्म का बोर्ड एक जगह देखा था, मैं और मेरी सहेली फिल्म देखने चले गए, लेकिन अंदर जाकर देखा कि अपने पराए फिल्म लगी थी, हमने जो है वो पुराना पोस्टर देख लिया था। तो ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की हैं। और अब चूंकि माहौल उस तरह के गानों का है तो एक और गाना आ रहा है और हेमंत कुमार की ये आवाज पूरी दिल में उतर जाएगी। हेमंत कुमार की आवाज के बारे में अपनी राय, अपनी बात कहिए।

हेमंत कुमार की आवाज में अनुपमा फिल्म का ये गाना है। एक श्रोता लिखती हैं कि हेमंत कुमार की आवाज बिल्कुल अलग है, वो अच्छे गायक ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे संगीतकार भी थे। एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि कभी ये गाना शायद ही कभी मुझे भावनाओं से आंसुओं तक लाने में नाकाम रहता होगा, जब भी सुनते हैं आंखें भर आती हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि इस गाने में धर्मेंद्र कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि हम स्कूल से भी सिनेमा घर ले जाए गए थे, बच्चों की फिल्म थी तो स्कूल ने हमें फिल्म दिखाने का फैसला किया था। इसके अलावा एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज आप कमेंट पढ़ने में सेंचुरी मार रहे हो भैया, शुक्रिया। एक और श्रोता है अनुपमा फिल्म का ये जो भावुक कर देने वाला गाना है, ये एक बात, और मेरे पिताजी का पसंदीदा गाना था, ये एक श्रोता की कमेंट है हेमंत की। हेमंता की आवाज में जैसे विषाद का स्वर घुला है, ये भी एक श्रोता की बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि कॉलेज से भागकर फिल्में देखना, ये तो मैं उस जमाने में सपने में भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए मुझे खुद बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाकर खर्चा निकालना होता था, इसलिए मैं अपनी क्लासेस कभी मिस नहीं करता था। बहुत ही सुंदर प्यारी बात आपने कही है भाई। आज यानी इस शनिवार 8 अगस्त के दिन हम बातें कर रहे हैं और पूरा एक हफ्ता 15 अगस्त को बचा है, तो चलिए बचपन की यादों की तरफ जाते हैं। स्कूल के दिनों में 15 अगस्त की तैयारियां आप किस तरह से करते थे ये ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग होंगे जो नाटक तैयार करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो कविताएं और गाने तैयार करते होंगे। एक ज़माना था स्कूलों में 15 अगस्त को जिस तरह से मनाया जाता था, स्वतंत्रता दिवस को मनाने का बचपन का जो उत्साह है वो बहुत ही कमाल का रहा करता था। तो हम चाहते हैं कि आप वो यादें हमारे साथ बांटें। ठीक है, एक हफ्ता बचाए 15 अगस्त के लिए और हम ये यादें बांट रहे हैं। तब तक चलते हैं त्रिशूल फिल्म के एक ऐसे गाने की तरफ जो बहस करता है कि मोहब्बत काम की चीज है या नहीं है। आप क्या कहते हैं, आपका मोहब्बत पर भरोसा है या नहीं है, या आप ये कहते हैं कि ये बेकार बेदाम की चीज है, या आप ये कहते हैं

एक श्रोता लिखती हैं कि मोहब्बत ईश्वर का खूबसूरत तोहफा है, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं, बस नीरसता रहेगी। एक और श्रोता लिखती हैं कि मोहब्बत एक सुंदर एहसास है जो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मोहब्बत के बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मेरी तो माँ ही प्रिंसिपल थी, इसलिए 15 अगस्त से काफ़ी पहले गतिविधियाँ शुरू हो जाती थी, नाट्य गीत नृत्य कहानी सभी की प्रैक्टिस हुआ करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी ने मोहब्बत के बारे में इस गाने में अच्छा भी लिखा है और बुरा भी लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आज आपको आना था और हमें बिल्कुल मिस नहीं करना था, बच्चे आ गए और हम थोड़ा बिजी हो गए। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि हम तो अमिताभ बच्चन के पक्ष में हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज़ नहीं मिलती तब तक वो बड़ी अनमोल होती है, मिल जाने पर वो बेमोल हो जाती है। बचपन के 15 अगस्त की तैयारियां क्या खूब हुआ करती थी, कई दिनों पहले से ही मन में तिरंगा लहराने लगता था, स्कूल की सफाई, रंग बिरंगे कागजों से सजावट, प्रभात फेरी की तैयारी और हाथ में थामे छोटे से झंडे का गर्व, बिल्कुल अलग तरह का उत्साह होता था। एक और श्रोता, बचपन में 15 अगस्त की बड़ी भोर को अगल बगल के घरों से फूल तोड़कर जमा करके स्कूल ले जाते थे ताकि तिरंगे में बांधे जा सकें। राष्ट्रगान के पश्चात

0: में वीर रस गाने में मूल गायन करता था, हेडमास्टर से शाबाशी मिलती थी। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जो सवाल आपने पूछा है, बहुत उत्साह से तैयारी करते थे, आज भी याद है। अपना स्कूल ड्रेस शूज सभी को धोकर तैयार करके हैंगर पर टांग कर रख देते थे, कब सुबह हो और जल्दी से तैयार होकर जाएं। और बूंदी के जो लड्डू मिलते थे, यूं लगता था कि खजाना मिल गया है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि 15 अगस्त को देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता होती थी और हम बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। एक और श्रोता कह रही हैं कि सुबह से इस गाने को याद कर रही थी पर यह याद नहीं आ रहा था। एक और श्रोता का कहना है कि 15 अगस्त के दिन नृत्य की प्रैक्टिस किया करते थे और मोतीचूर के लड्डू आज भी उन्हें याद आते हैं। इसके अलावा साहिद लुधियानवी के बोलों की तारीफ हमारे कई श्रोताओं ने कही है और इस गाने में एक ऐसी तपिश है जो दिल को पिघला देती है। एक और श्रोता शिकायत करती है कि भाई हर रोज हमारे काम करने का जो वक्त है वो मुकर्रर होता है, लेकिन जिस दिन आप आते हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में हमारा पूरा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है। भाई माफी चाहते हैं लेकिन सुरीला सफर में आना छोड़ नहीं सकते हम, आप अपना टाइम टेबल पूरी तरह से बिगाड़ कर रखिएगा और हम आते रहेंगे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि हेमंत कुमार की आवाज़ गंभीरता और मिठास लिए हुए हैं और 15 अगस्त की तैयारियों के बारे में तो बस श्रोताओं के कमेंट लगातार चले आ रहे हैं और बहुत ही उमंग और उत्साह की बात। एक श्रोता है जिन्होंने बिल्कुल अलग तरह का कमेंट लिखा है, वो कहते हैं कि बारिश और ठंडी ठंडी सुबह होती थी तो 15 अगस्त के दिन नहाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। क्या बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए ये क्या हुआ।
1: कैसे हुआ कब हुआ?
0: क्या आप आम जिंदगी में इस गाने का इस्तेमाल करते हैं? किस तरह से, कब, जरा हमें बताइए।

एक श्रोता कहते हैं कि मेरी लिस्ट का ये सातवां गाना भी बच गया है, यानी आज की इबारत में से उन्होंने बहुत सारा अंदाजा लगा रखा था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत बार जब सोचते कुछ और होता कुछ और है तो हम कहते हैं ये क्या हुआ। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब कोई चीज गुम जाती है तो मैं अक्सर गाता हूं ये क्या हुआ। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इस धरती के अनमोल रत्न से विभूषित किशोर कुमार, भाई किशोर कुमार की तारीफ करें। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि ये क्या हुआ गाना बज रहा है, बादल छाए बस बारिश होने वाली है। एक और श्रोता एनसीसी में थी और वो कह रही हैं कि जो खाने का पैकेट मिलता था वो बहुत ही शानदार होता था। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई ये तो हमारा तकिया कलाम है, ये क्या हुआ जब तब हमारी जबान से ये निकल जाता है। और इसके अलावा कुछ और श्रोताएं 15 अगस्त की यादें, वो समूह गान, सब कुछ याद आ गया है। और एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर हमारे स्कूल में परेड होती थी और हजरतगंज

0: पैदल ही हम सब परेड में भाग लेते थे। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत यादें अपनी बांटी हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि एक दिन पहले ही सुबह 3 बजे नींद खुल जाती थी कि कल बूंदी वाले लड्डू मिलेंगे। भाई हाईलाइट है ये, बूंदी वाले लड्डू जो हैं ये सबके लिए एकदम कॉमन बात है। कितनी सारी यादें श्रोताओं ने साझा की हैं। और अब देखिए क्या प्यारा गाना साहिर लुधियानवी का।
1: खुद पे
0: क्या आपको लगता है कि आज के जमाने में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सहृदयता, संवेदना कम होती जा रही है?

एक श्रोता ये लिखती हैं कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, ये गाना जमाने की हकीकत को दर्शाता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज अगर संवेदना कम होती चली जा रही है तो उसकी एक वजह मोबाइल फोन है। और इसका एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि भाई सचमुच आज संवेदनाएं बहुत कम होती चली जा रही हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सहानुभूति होती तो है पर आज के लोग उसे व्यक्त नहीं कर पाते, अपने आप में इतने गुम रहते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि आज का वक्त ऐसा है कि किसी को किसी के पास वक्त नहीं है। एक और श्रोता लिखते हैं कि संवेदनाओं में 100% की कमी आई है। तो बहुत सारे श्रोता ये मानते हैं कि आज संवेदनाओं में लगातार कमी आती चली गई है। एक और श्रोता है जिन्होंने 15 अगस्त की सुहानी याद के बारे में अपनी बात ये लिखी है कि मैं कक्षा छठी में थी और मुझे भाषण देने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, लेकिन उस दिन मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया और मैं तो रो पड़ी थी। भाई देखिए ये भी एक याद जो है वो उभर कर सामने आ गई। एक बहुत ही जज्बाती गाना अब आपके लिए, आपको बताना है कि हमने ये किस फिल्म से लिया है।

लता मंगेशकर की आवाज बहू बेगम फिल्म का ये गाना बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात पहचान ली है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज किसी की खुशी या परेशानी में रील बनाना लोगों को ज्यादा पसंद आता है। और इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आज लगातार जज्बात की कमी होती चली जा रही है। आखिरी गाना ये रहा मदन मोहन और लता मंगेशकर के कॉम्बिनेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका ये बताइए।

0: भई आज के कार्यक्रम का वक्त यहीं खत्म हो रहा है। आप सभी ने इस कार्यक्रम में साथ निभाया और सवालों के जवाब दिए, कमेंट्स किए, गाने सुने, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के संग बने रहिए, क्योंकि विविध भारती देश की सुरीली धड़कन है। कार्यक्रम का सफर आपने अपने
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says self-reliance in emerging sectors like semiconductors, space and drones will serve as a strong foundation for Viksit Bharat. Urges IIT students to keep national interest at the center of their decisions. Jharkhand government holds a second round of talks with student protesters over alleged irregularities in JPSC and JSSC examinations. 7 people killed and 11 injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. IMD issues orange alert for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Orissa today. Amarnath Yatra from Jammu towards Baltal suspended due to bad weather conditions. And in men's javelin throw, Ashish Yadav wins silver at World Athletics Under 20 Championship.

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
1: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही सीआईडी ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की

0: प्रस्तुतगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
2: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इपको, क्रिपको, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है। और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़,

0: छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
2: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतर की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे। SH बिहारी के बोल ओपी ने फिल्म है ये रात फिर ना आएगी।

0: खुद से सुनी है, नहीं उदास नहीं बस ये।
1: गुलजार के बोल हेमंत कुमार की तर्ज, उन्हीं की आवाज, सन्नाटा फिल्म का ये गाना था। इससे पहले सावन की घटा फिल्म का गीत आपने सुना। मोहम्मद

यह अवस्थी एस एच बिहारी के बोल ओपी नैयर की तर्ज थी। एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी

आ रहे हैं विविध भारती पर 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे आप सुन रहे हैं सदाबहार रेडियो।

मेरे साया फिल्म का यह गीत आपने सुना, आशा भोसले की आवाज में था। राजा मेहंदी अली खां की बोल थी, मदन मोहन की तर्ज थी।

0: फिल्म का नाम था दुल्हन एक रात की। ये गाना अभी आपने सुना और ये आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश थी।
1: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
2: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
1: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहतनामा।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी आप सभी को नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन

0: चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
0: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
2: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मन चाहे गीत कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम का आगाज हो रहा है मिस्टर नटवरलाल फिल्म के गाने से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें और फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी, पलोमा और डॉक्टर ईशानी। और ये चिट्ठी लखी श्रीवास्तव, दिशा, दिव्यांश और रूही की है, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा ये खत है चेतन शामतकर और ज्योति शामतकर और पुरुषोत्तम शामतकर का उल्हासनगर से। और इसी गाने की फरमाइश करने वाले ये श्रोता हैं गुजरात भावनगर से राहुल ओझा, दीपल और ये नाम कुछ प्राप्तक ओझा जैसा कुछ नाम लिखा हुआ है। और ये कर्नाटक से चिट्ठी है चिन्ना तिरुपति से श्यामला, प्रकाश, अश्विनी, रमेश, आनंद और मनवित की। आप सभी सुनिए ये गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार। गीत आनंद बख्शी, संगीत राजेश रोशन।

कार्यक्रम का अगला गीत जमाने को दिखाना है फिल्म से है और इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने गाया है। आपको बता दें कि मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह गीत आरडी बर्मन ने कंपोज किया और चिट्ठी लिखी घड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाठे संदीप अमूल्य और वैशाली बाठे ने। इसी गाने के लिए राजकोट से मधुसूदन भट्ट आरती जास्मीन और प्रयागराज का खत है और ये चिट्ठी है रवि भाई सिसोदिया मुन्ना भाई सिसोदिया गीताबा सिसोदिया धर्मराज करणराज और पूरे सिसोदिया परिवार की केदारनाथ सोसाइटी से। वामन मगरे मराठवाड़ा नांदेड़ से इन्होंने चिट्ठी लिखी है और वारंगा फाटा जिला हिंगोली से कुंडलीक मोरे पांडुरंग मोरे अश्विनी मोरे और वैष्णवी मोरे ने चिट्ठी लिखी और दिलचस्प ये है कि केदारनाथ सोसाइटी वाले हमारे श्रोताओं ने अपना नाम नहीं लिखा, वो नाम अपने शहर का नाम लिखना भूल गए। आपके लिए ये गाना

विविध भारती पर आप मन चाहे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और अब जो गाना आ रहा है उसके लिए आप सभी के खत मिले हैं। अल्लिया नगर केंड गांव से भाऊ साहेब नवथर अक्षय चंदन जय कुमार चंदन रुचिता चंदन और इनका परिवार। ये चिट्ठी है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक कुमार श्याम कुमार प्रमिला चीनू आसमा दीपक अनुश्री और पूरे श्याम कुंवर परिवार की और बहुत ही रंग बिरंगी चिट्ठी राजेश वाघमारे प्रिया वाघमारे रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे की जूना तारफेल अकोला महाराष्ट्र से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल नफीसा और ये पूरा परिवार हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गाने को सुनना चाहता है। उदयपुर से फरमाइश आई है अशरफ खान जब्बार मोहम्मद तजीब खान मंजू और निम्मी की। आप सभी की फरमाइश पर सौतन फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें गीत सावन कुमार संगीत उषा खन्ना।

0: नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: हाँ।
0: तेरी कसम आऊंगा।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं मनचाही गीत कार्यक्रम, और मनचाही गीत कार्यक्रम में देश भर से हमारे श्रोता लिखते हैं चिट्ठियां और इंतजार करते हैं अपनी चिट्ठियां शामिल होने का और अपने गानों का। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता, ग्राम खकल तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, अंश राज गुर्जर और इनका पूरा परिवार, रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और बाबू भाई महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर के श्रोता हैं, और गणेश पेट पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, कृष्णा शिंदे, आराध्या श्लोक और भैया, और ये

श्रोता हैं, सिंधी कैंप की खोली अकोला महाराष्ट्र से श्याम संतानी, आशा संतानी, नैन्सी संतानी और सुमित संतानी, ये सभी सुनना चाहते हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है, फिल्म है मशाल।

और अब मंचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बहू बेगम फिल्म का गीत सहर लुधियानवी के बोल रोशन की तर्ज और आप सभी की फरमाइशें चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया और बीबी आरजू जाजोरिया वरुण जाउलका से महेंद्र सरकटे विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे निखिल साखरकर रोहित सुनीता अरविंद साखरकर और पूरा परिवार मालेगांव जिला वाशिम से और कबीर रेडियो श्रोत्रा संग बालोद छत्तीसगढ़ से डॉली बेबी पूजा तमूरिया राधिका प्रभा देवी अजय देव देव शंकर तुषार देव तमूरिया और इनका पूरा परिवार। ये गाना आप सभी की फरमाइश पर, फिल्म का नाम है बहू बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधु राय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी। तो सुनिए नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग।
1: केशव कहाँ चला गया? केशव, केशव, तीसरी घंटी हो गई और केशव से कहोगी अनाउंस करे। हाँ है ये लेखक की तुम केशव ठाकर,
2: प्लीज
1: अभी आया पाटिल जी, जाके अनाउंस क्यों नहीं कर रहे?
2: जहाँ
1: केशव कहाँ जा रहे हो? माइक्रोफोन तो ये रहा।
2: सॉरी सॉरी डॉक्टर साहब, माइक जरा ऊंची करो। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई मीन नमस्कार देवियों और सज्जनों। हाँ तो नाट्य मंच अपने नए नाटक के प्रथम प्रदर्शन के अवसर पर आप सबका सहर्ष स्वागत करता है और आपके सम्मुख प्रस्तुत करता है हास्य प्रधान नाटक किसी एक फूल का नाम लो। सज्जनों सज्जनों शांत, इसके लेखक हैं केशव ठाकर और निर्देशक जगन्नाथ पाठक। सज्जनों

सज्जनों सुनिए सुनिए, कलाकारों का भूमिकाओं सहित परिचय इस प्रकार है। कांता कामनी देसाई, प्रमोद प्रमोद जगन्नाथ पाठक, भाभी स्वाति सोनी, सज्जनों शान और सुनिए नंदलाल प्रीतम सोनी, निरंजन सुंदर देसाई और देश पांडे केशव ठाकर। हाँ सज्जनों, तो अब प्रस्तुत है नाट्य मंच का ये नाटक किसी एक फूल का नाम लो।

0: जानता, मान लो कि
1: प्रमोद मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम अपनी जिद छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी
0: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और हमारे बीच पति पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है। ओह कितनी देर हो गई।

0: भाई और देशपांडे केशव ठाकर। हाँ सज्जनों, तो अब प्रस्तुत है नाट्य मंच का ये नाटक किसी एक फूल का नाम लो।
1: बचा।

0: कांता, मान लो कि
1: प्रमोद, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम अपनी जिद छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी,
0: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और हमारे बीच पति पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है। ओह, कितनी देर हो गई।
1: दफ्तर जा रहे हो प्रमोद? जाओ।

0: हेलो, कौन? नंदलाल भाई? हाँ, मैं कांता बोल रही हूँ। सुनिए, प्रमोद आज फिर झगड़ा करके दफ्तर चला गया है। हाँ, आज रात अगर आप हमारे यहाँ आ सके ज्योत्सना भाभी को लेकर तो ठीक रहेगा। हाँ, प्रमोद को खुद फोन करके बता दे, निरंजन को मैं बता दूंगी। अच्छा, रात को जरूर आइएगा। बाय।
1: कहो मेरी जान।
0: ओह, तुम आ गए निरंजन। आज रात को फैसला हो जाएगा। मैंने नंदलाल भाई और भाभी को बुलाया है।
1: सच मेरी कांता?
0: करते रहोगे फिर सब आ गए। आओ, सब आ जाओ। आज मेरी अर्थी उठ रही है। रोने वालों की जरूरत होगी। नंदलाल भाई आओ, ज्योत्सना भाभी आओ, निरंजन तुम भी आओ।
2: आखिर हुआ क्या कांता?
3: अरे नंदलाल, मैं बताती हूँ। असल में कांता और निरंजन।
4: नहीं नहीं नहीं, ये बात झूठ है। हम प्रेमी नहीं है।
2: प्रमोद, तुम ये क्या टाइप कर रहे हो?
5: आज जहाँ दंगा होने वाला है नंदलाल भाई, उसी को खत्म करने के लिए मैंने अपना यह घोषणा पत्र तैयार किया है। तो सुनो, आई प्रमोद पटेल, हस्बैंड ऑफ माय मोस्ट बिलवड वाइफ कांता पटेल, मैडम नेम कांता गोस्वामी, डू हियर बाय डिक्लेयर।
3: प्रमोद भाई सुनिए ना, मैं तुरंत अनुवाद कर सकती हूँ। लाइए अपना कागज, मुझे दीजिए, मैं पढ़ती हूँ।
5: ठीक है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
3: अच्छा, तो प्रमोद भाई कहते हैं, मैं प्रमोद पटेल, कांता पटेल का स्वामी, घोषणा करता हूँ कि मेरी किसी समय प्यारी पत्नी कांता मेरे विश्वास पात्र दोस्त निरंजन को चाहती है। इसलिए आज फला साल के फला महीने की फला तारीख को अपनी मर्जी से, अपनी अक्ल से, मैंने अपनी जान देने की घोषणा की है।
5: मुझसे सुनो मेरी घोषणा। मैं प्रमोद पटेल अपनी सारी ताकत जुटाकर कांता के छिपाए हुए पिस्तौल से आत्महत्या करता हूँ। अलविदा, अलविदा।
0: मुझे विश्वास हो गया है कि।
5: कैसा विश्वास?
0: कि तुम मुझे प्यार करते हो।
5: फिर भी मैं अपनी घोषणा पर अटल हूँ।
0: प्रमोद, रुक जाओ।
5: दो।
0: इस पिस्तौल से मैं ही मरूंगी। लाओ पिस्तौल, मुझे दो।
5: कांता, ये पिस्तौल मुझे दो।
4: तुम्हारा संसार उजड़ने के पहले मैं ही इस पिस्तौल से।
0: खबरदार निरंजन, तुम मेरे जीवन में तो आए, पर अब मेरे और मेरे पति के बीच में मत आना, वरना अभी इस पिस्तौल से।
4: ठीक है, पहले मुझे मार डालो, मेरी दुखी आत्मा को शांति दो। कांता, कांता, मुझे गोली मार दो, वरना मैं तुम्हारे हाथ से पिस्तौल लेकर आत्महत्या कर लूंगा।
0: सर, तुम मुझे इतना प्यार करते हो निरंजन।
5: कांता, कांता, तुम मुझे ही मार डालो, मुझे ही मार डालो, या पिस्तौल मुझे दो, मैं अपने आप ही मर जाऊंगा। तुम दोनों प्रेमी जियो और खुश रहो।
2: सुनो प्रमोद, तुम्हारी पत्नी यदि दूसरे को चाहती है तो इसमें मरने की कोई जरूरत नहीं। मुझसे शादी करने से पहले मेरी इस पत्नी ज्योत्सना को किसी दूसरे से प्यार था।

0: हैं? नंदन, इस रहस्य का तुम्हें पता था?
1: तुम्हारा प्रेमी देश पांडे थोड़े दिन हुए वो मेरे पास आया था पैसों के लिए।
2: कैसे पैसे?
1: ब्लैकमेल के पैसे।
0: लेकिन ब्लैकमेल किस लिए?
1: उसके पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं।
0: है?
2: कितने रुपए मांगता है वो?
1: सौदा आज पक्का होगा, वो आता ही होगा यहाँ।
2: यहाँ?
1: हाँ, मैंने देश पांडे को यही का पता दिया है और अब प्रमोद, कांता और निरंजन तीनों से मेरी प्रार्थना है, देश पांडे यही आ रहा है। तुम में से जो भी मरना चाहता है वो उसे मारने के बाद मरे, तो मैं उसका एहसान मानूंगा।
3: प्रमोद, तुम्हारा इरादा मुझे मारने का हो तो रुक जाओ, मैं देश पांडे का खून करूंगा और इस तरह फांसी पर लटक कर तुम्हारी और नंदलाल की दुनिया आबाद कर जाऊंगा।
2: शायद देश पांडे आ गया, मैं दरवाजा खोलता
0: हूं। नहीं, तुम यहीं रुको प्रमोद, तुम्हारा शायद भागने का इरादा है, दरवाजा मैं ही खोलूंगी।
4: कांता, अपना पिस्तौल मुझे देती जाओ, उस चांडाल का मैं खून करूंगी।
5: ये मेरा घर, मैं ही उसका खून करूंगा, तुम्हें करना हो तो उसे अपने घर ले जाओ।
2: लो वो आ गया।
6: आप सबको नमस्कार, माफ कीजिए, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन।
1: गुड इवनिंग मिस्टर देश पांडे। ये सब मेरे मित्र हैं। ज्योत्ना, तुम तो इन्हें मिस्टर देश पांडे को जानती हो?
0: हाँ हाँ।
1: और प्रमोद, कांता, निरंजन, ये हैं मिस्टर देश पांडे, जिनका खून कौन करे इस बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। हैं? सब लोग एक पंक्ति में क्यों बैठ गए?
5: आखिर बात क्या है नंदलाल?
1: तुम्हें नहीं, मैं इस थिएटर हॉल में बैठे हुए दर्शकों को सब बताता हूं। देवियों और सज्जनों, अभी थोड़ी देर पहले प्रमोद, कांता और निरंजन एक दूसरे के लिए आत्महत्या करना चाहते थे, एक दूसरे से अपना खून कराने के लिए जोर दे रहे थे, और अब सवाल है मिस्टर देश पांडे के खून का। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि ये रहस्य नाटक है, इस नाटक के सभी पात्र यहां मौजूद हैं, आप विद्वानों में से कोई भी ये बता दे कि किसका खून होगा और कौन खून करेगा तो उसकी अक्ल की मैं दाद दूंगा। आपको बस इतना बता दूं कि खून इनमें से ही किसी एक का होने वाला है और इनमें से ही कोई करेगा भी।
4: नंदलाल, मेरे हाथ में ये पिस्तौल देख रहे हो ना? मैं तुम्हारी तिकड़मों से तंग आ चुकी हूँ। अरे, हम सबको कठपुतली की तरह नचाने वाले, मैं तुम्हारा खून करती हूँ।
1: अरे ज्योत्ना, ये क्या कर रही हो?
4: भाभी,
1: ये पिस्तौल असल है,
4: मेरे
1: असली।
4: पास रहने दो।
7: भाभी, ये पिस्तौल मुझे दो।
4: मुझे क्या कर रही हो तुम?
7: हट जाओ भाभी। शेखर खोसला, शेखर खोसला।
8: कांता का रोल जो कर रही थी वही।
9: मैं सच कहूंगा, पूरा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।
10: आपका नाम? उम्र? काम?
9: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, उम्र 33 साल, काम नाटकों में अभिनय करना।
10: सरकारी वकील अब दवा से गिरा कर सकते हैं।
11: थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर पाठक, आप मुलजिमा कामिनी देसाई को जानते हैं?
9: जी हाँ, हमने कई नाटकों में एक साथ अभिनय किया है।
11: कुछ और?
9: मतलब?
11: कामिनी देसाई आपकी प्रेमिका है?
9: जी जी हाँ, कामिनी देसाई मेरी प्रेमिका है।

वर्षाकी मी चेन्दुनिक था लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलंग आसन आसन कपचे थांग वर्षाइदो लबांग सुंग बंग माई मीटिंग पांगरी पांग दोन महांग के थे किथि के जांग के जोर के नाम कुलारा की मिकांगपू हेम की मिकांगपू चुजुन चमांकान रोंग केयर आरोंगजे बिहू क्रिसमस निंकान की मिया हिरजुमी लपेन अनपार्टा कप्रेक आसन आसन आलाम पचे थांग जी लिपुते लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलंग नंगहुमरी इक्तामी मोबाइल पेंजोंग सी चिंकी इक ची पुलोते मोबाइल नंबर के 9476880085 लापेन 9101008242 हेनलो।

वर्षा किमी चु एंदुनिक था लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलों आसन आसन कपचे थांग वर्षाई दो लबांग सुंग बों माई मीटिंग पांगरी पांग दोन महंग के थे किथि के जांग के जोर के नाम कुलारा की मिकांगपु हेम की मिकांगपु चुजुन चमांकान रोंग केयर आरोंग अजे बिहू क्रिसमस निंकान की मिया हिरजुमी लपेन अनपार्टा कप्रेक आसन आसन आलाम पचे थांग जिलीपुते लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलों नंग हुमरी इक्तामी मोबाइल पेंजोंग सी चिंकी इक जी पुलोते मोबाइल नंबर के 9476880085 लापेन 9101008242 हेनलो

0: টকাৰ ভিতৰত মিঠাতেলৰ 15 কেজিৰ প্ৰতিটো টিনৰ দাম 2180 টকাৰ পৰা 2560 টকা, বনস্পতি ঘিৰ 15 কেজিৰ প্ৰতিটো টিনৰ দাম 2250 টকাৰ পৰা 2280 টকা, আৰু গোমধান প্ৰতি কুইণ্টলৰ শেহতীয়া বজাৰ দৰ 2500 টকাৰ পৰা 2600 টকা। পাচলি আৰু আন শস্যজাতীয় সামগ্ৰীৰ শেহতীয়া বজাৰ দৰ ইমানেই।
1: इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
2: मतलब
1: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग पहली वाली बात कहा
2: पर हम तो सभी डाले हैं
1: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं
2: सच
1: है एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं
2: ठीक है भाई मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती
0: এইখিনিতে শুনোৱা হওক কৰ্মেশ্বৰ খাটনিয়াৰৰ কণ্ঠত এটি লোকগীত।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नॉन स्टूडियो घूरिए पर फाय नर कैबरा मिनी प्ली कैबरा फॉपलिंग जी डॉग डॉग लो लसी दिल्ली स्टेशन पेन समाचार संध्या हिंदी अलम पेन बिरता बचिसाक आरजुदुनिक सिनांग लाके आकाशवाणी दीपू।
2: टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा, उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फोरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फोरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। समाचार संध्या में आपका फिर

0: स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
1: 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरातवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
2: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी सम्पन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहाँ वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में सीईओ गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट

0: में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति पिजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ी एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
2: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards.